चौथा हर के जानो सतगुरु सर पुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीर्तन हमरी रह रास रहाओ अर्जन के बड़ भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यासे हर हर नाम मिलाए तृप्तस है मिल संगत गुण प्रगासे जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीव त्रिग जी बास जिन हर जन सतगुर संगत पाई

हमरे दुष्ट सब तुम काबहो, आप हादय मोहे बचाबहो, सुखी बसाई मोरो परिवार, सेवक सिख सबाई करता रा, मोर छा निज कर दया करिए, सब बैरन को आज संघरिया, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ो कोई अवर्ण त्याऊ, जो बरचाहू सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सतर हमारे मारिया है, आप हाथ दे मुझे अबरिया, मरण काल का त्रासन मरिया, हो जोसदा हमारे पछा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा,

की आत्मासा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार हता हूँ मारा जवन काल सब जगत बनायो देव दातो जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सब

लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जाग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सब राता, किरविक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखी अनको छा करता। श्री अस्तोजा पहे दे अल्ला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई।

निकट नंग तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत 1700 पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कही जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रब बारा तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित उपख्याने त्रियं त्रित्रे मंत्री भूप संबादे 405 त्रित्र समाप्त मस्त सुमस्त अफजू दोहरा।

जल ही विकास समाज दोहरा। जब आए सुप्रभ को पयो जन्म तराव जग आए, अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कहत सुनाए, का बाचन दोहरा। पढ़ पयो मैं जोर करू बचन कहा सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा।

सवैया पाएंगे हैं जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी करो मैं ना कहो सब तोहे बखाने ओ दोहरा

प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया बधाइया।

दसमें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग

लोचन मूंद कहे वैष्णव भक्त ध्यान लगाय नाथ प्रियो लिये सास मंदरन लोक परलोक गवायु बासकी बिखया सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच काहू सुन रहो सब दिन प्रेम की उतने ही प्रपायो काहू ल पाहन पूछ तरयो सिर काहू ल लिंग घरे लटकायो काहू लख्यो हर अबाती दिशा मैं है काहू पचाह कोसी सुनवायो को बतानक पूछ है पास को मृत तानक पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतानक पूछ है पास को मृत तानक पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाचो बेनती चौपाई अमरी करो हा दर छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतवारा अमरे दुष्ट सब मुकाब हो आप दय मोह बचाव हो सुखी बसाई मोरू परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दय करियाय सब बैरन को आज संघरियाय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई और न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारी मारी है आप हाथ है मुझे बरे आई मरण काल का त्रासन बरे है हो जो सदा हमारी पछा श्री अस तो जिक्र हो रच्छा राख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दस्तन के हमता तुम हो परी चातर दास कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मा सा।

करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचा नाही मनसा सस माणी जन्म रतन जिन खटे अंग भले सेवन जाने कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै तो सनमुख सिख कोई जियो रह गुरु नाले गुर के चरण हिरदय ते अयंत्र आत्मा समाले आप छाड़ सदा रह परनाई गुरबने अवरण जान कोई कहना।

आपे पिताओ जिन जियो पाए जगत दिखाया। गुरप्रसादी बुझया ता चलत होवा चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंग।

होए। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंतर जाए लख्या रहा हो जात में जोत जोत में जाता कलकला पर भू रहा तू सच्चा साहेब शिव सवाल।

लोभ है जेवा सुतक कूड़खी सुतक वेखना पर त्रै बरधन रूप कनी सुतक कन पहला इतबारी खाए नानक सा आदमी बदे जा।

त्रिलोचन सदना सैन तरै कह रवदास सुनो रे संत हो हर जियो ते सब सर नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे।

0: गुरपैरा जाके हिरदा बसे गुरपैरा गोबिंद चरणन को बल जाओ गोबिंद चरणन को बल जाओ कर कर प्रणाम चित चरण नाम गोबिंद
1: बड़ी कपर रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम के मन भांदे रहे पीड़े अगे जावना नंगा तो चकचा लिया दे तिसे खरा डरावना कराओ गण पछो तावना कराओ गण पछो तावना।

तुम्हारा एह मन होवा हर चरणा हो कौला गुर के चरण मन माहे वसाए सब जाए मिलो।

श्री नानक अंदना जापनी हरता के पारावार आप कराए शक्ति विराप कराए मार एक नगली जंजीरी एक त्रिजले बस्यार आप कराए करे आप हाँ कसे पुकार नाना करना जिनकिया प्रतिजी करने

लोचन सदना सैन तरै कह रवदास सुनो रे संत हो हर जियो ते सब सर नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरै।

0: गुरबैरा जाके हिरदा बसे गुरबैरा गोबिंद चरणन को बल जाओ गोबिंद चरणन को बल जाओ घर घर प्रणाम चित चरण नाम गोबिंद
1: बड़ी कबर रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुकम के मन भांदे रहे पीड़े अगे जावना नंगा तो चकचाला दे तिसे खरा डरावना कराओ गण पछो तावना कराओ गण पछो तावना।